0: करते दिल की फीलिंग्स।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
2: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा अपने अंदर।

ए अब्रे करम थम थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके। जब आ जाएं जम जम के बरस, इतना तू बरस कि वो जा ना सके। ये जो हसीन सा शेर है ना, ये मुझे पहली बार इस ऐसे इंसान ने सुनाया था जिससे मुझे पहली बार प्यार भी हुआ था। एंड उस समय मुझे नहीं पता था अब्रे करम क्या है, और मैंने ऐसे शर्माते हुए पूछा कि शेर तो अच्छा है लेकिन अब्रे करम का मतलब क्या होता है। एंड ही सेड बारिश। और इस मौसम में मुझे अपने उस पहले प्यार की याद आ गई। तो जितने भी आशिक इस दुनिया में अभी घूम रहे हैं ना, आई एम श्योर दे आर सेइंग द सेम थिंग कि पहले इतनी तेज़ बारिश ना हो कि हमारा लवर हमें मिलने ना आ सके, और जब आ जाए हमारे साथ हो तब इतनी जम के बारिश होना कि चाहते हुए भी वो हमें छोड़ के जा ना सके। अगर आप मेरी तरह बारिश से इंस्पायर्ड रोमांस करना चाहते हो, अगर आप मेरी तरह एक ऐसे नस कटे कर्म जले आशिक हो जिसे बारिश देख के सडनली प्यार का मूड हो जाता है, देन व्हाई डोंट यू सेंड मी योर बारिश वाली लव स्टोरी ऑन इंस्टा या FB। आई टोटली वॉन्ट टू हियर दैट राइट नाउ। एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Hey, Kanhaiya Lal ki.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: तो ऑन द वन हैंड आप एक बंदे से बात कर रहे हो और फिर ऑन द अदर हैंड उस बंदे से बात करते करते यू आर वॉकिंग इन टू अ कैफे बिकॉज आपकी एक डेट भी है एंड वाई नॉट, चार पांच ऑप्शंस तो होने चाहिए लाइफ में, है ना?
1: द सीक्रेट बॉक्स,
0: इफ यू आर अ बिलीवर इन नॉन मोनोगमी जिसे पॉलीगमी कहते हैं और उसके बारे में कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. लेट्स गेट टॉकिंग बेबी. एंड मेरे साथ लाइन पर अभी है एक बहुत ही नॉटी बॉय जो अपने आप को कानून के चंगुल से बचाकर मुझसे फोन पर बात कर रहा है. हेलो नॉटी बॉय कॉलिंग नॉटी बॉय. हेलो नॉटी बॉय. हाय.
2: हेलो. हाय.
0: तो क्या ये सच है कि आपने अपने आप को कानून के चंगुल से छुड़वा कर मुझे फोन कॉल किया है?
2: हाँ जी, बिल्कुल सच है.
0: तो आप क्या मुझे इस सच्चाई पर और रोशनी डाल सकते हैं?
2: हाँ जी, मैं बताता हूँ. तो हम मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम एक कार में थे. सुबह हो रही थी और वो रेंटल कार थी, तो रात की कुछ 4 बज रही थी एंड हमारे वो कार का ड्रॉप ऑफ भी 4:30 अराउंड था. तो हम गाड़ी में बैठ के दारू पी रहे थे एंड हम दोनों काफी बंद थे. तो फिर हम देखते हैं दूर से एक पुलिस की कार आ रही है एंड वो रॉन्ग साइड आ रही है. तो हमने देखा कि यहाँ से चल लेते हैं क्योंकि अगर पकड़े गए तो हम दोनों की ऐसी की तैसी हो जाएगी.
0: करेक्ट.
2: और हम मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और पुलिस की गाड़ी मेरे सामने आती है और मेरे को हाथ देती है कि रुक जाओ. पर तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा. मेरे अंदर का डॉन जाग गया और मैंने वहां से गाड़ी भगाई और हमने गाड़ी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली. हम जैसे लेफ्ट राइट करते करते गाड़ी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचे और तब तक हमने वहां एक ऊबर बुला ली थी. तो हमने जैसे ही गाड़ी ड्रॉप करी हम एक ऊबर में बैठ के वहां से चले.
0: डूड, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर आप एक भंड अवस्था में हैं, आपका दिमाग इतना चल रहा था कि लेफ्ट राइट ऐसे वैसे एंड लाइक नॉट अ स्क्रैच ऑन द कार या गर्लफ्रेंड पर भी एक्चुअली
2: कोई स्क्रैच नहीं. अब सोचो मेरा सोबर में कितना दिमाग चलता होगा.
0: तू बहुत पानी बंदा थे को रोशिफाई कर दूं?
2: कर दो प्लीज.
0: देयर यू गो,
3: यू've been रोशिफाइड.
0: अगली बार या तो भंड मत होना और अगर होगे तो ऐसी जगह होना जहां कॉप्स तुम्हें चेज ना करें लाइक द डॉन. हर बार मजे नहीं आएंगे, प्रॉमिस कर रही हूं.
2: हाँ जी, हर बार तो नहीं होगा.
0: हाँ जी, ऑल द बेस्ट टू यू. अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही भंड अवस्था में अजीब और गरीब कारनामे किए हैं तो मेरी जान, Who will you call except for your broshi? Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai ROCHIE. So hit me up on Insta ya FB. And while you do that, kahin mat jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

है पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं क्यों किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
2: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है। इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
0: नंबर 20।

कॉकटेल 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी-कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 16

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. ये था मैं और तू by Jasmine Sanilas. And I don't know अगर धुरंधर एक सच्ची कहानी है या it's fiction. But Bollywood filmmakers को सच्ची कहानियाँ पसंद बड़ी हैं. Which is why we love our biopics. And एक और biopic देखने के लिए अब जनता उत्सुक है. सौरव गांगुली की biopic दादा. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं. इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं. क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं, वक्त मांगती है. सिर्फ एक एमएस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क्ड फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच. है नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल. गाना याद है ना? पल ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर

ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. एंड देन तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक इज द सेम टीम दैट इज गिविंग अस वे जुनून इन आवारा पंटू, इमरान हाशमी और उनके साथ इस गाने के कंपोजर मिथुन. और इसी कॉम्बो ने एक और गाने में जादू बिखेरा था, जब कई बार दिल टूटने के बावजूद फिर मोहब्बत करने चलता है.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3

0: जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है. थिंग्स आर लॉट मोर कॉपरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड. प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में. तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपांड हो गई है. मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी. मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ.
1: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप. जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ.
2: क्या बोलो यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम. अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा. बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट. आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट. And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ram Leela in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
1: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. Ronis ki jagah यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन. लेकिन अब भी वो बेचैन था. और फिर आया तीसरा रणवीर. खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया. अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने. आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी. आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग. ठीक है, ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी. द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची Top 20. Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है फॉर असली पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑफकोर्स एज अ स्पेशल स्पॉटलाइट। ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है साडी सुन। तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: नंबर 10।
2: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लोकी।

0: कहाँ है वो लोग, नजर नहीं आ रहे जो बोलते रहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं? ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं तो वही गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो बिंदास आके हिट मी अप। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स बाय एन आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुनते ही ना, मतलब मेरे को एकदम वो मजे आ जाते हैं। यू नो देर आर दीज वॉइसेस विच मेक यू फील रियली हैप्पी। वो बोलते हैं खनक है उनकी आवाज में। आई एम टॉकिंग अबाउट एश किंग, जिन्हें मोस्ट पॉपुलरली हम जानते हैं एज वॉइस बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: आई लव यू।
0: कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे AR रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस UK से आए थे, बट AR रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने AR रहमान के लिए ये वाला गाना गाया। गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जियां के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, TMO। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई।

There's something about Ash King's voice which just naturally draws you towards this song. आप connect कर जाते हो. वो कभी गाने पे हावी नहीं होते हैं, बल्कि he lets you experience that song. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए. नई नवेली entry debut कर रही है सीधा Ash King की आवाज में. एक गाने का नाम है किनिया सोनी. ये गाना debut कर रहा है this week on गाना number 8. You are listening to गाना indie top 10. बंदी का नाम है कनका. Enjoy. Number 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7 7

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज रावटोर का म्यूजिक कोक स्टूडियो भारत का गाना दिस वाज ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में, गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week, all about the hottest pop stars of the music scene. Instagram पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJ Kanika. कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे। एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले। इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था, एंड देन केम समझो ना। इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है। इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्ग राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारी का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा। उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारीज बेस्ट सॉन्ग दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

आदित्य रेगारी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, दैट वॉज साहिबा। दिस सॉन्ग इज अ रिमाइंडर दैट एक अच्छे गाने को किसी बड़ी फिल्म या बड़े हीरो की जरूरत ही नहीं होती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आदित्य रेगारी ऐसे और एग्जाम्पल्स हमको देते जाएंगे। काउंटडाउन में आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना इज बाय संजू राठौड़, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैंगल्स। 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ, सिया, डेविड गेटा का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आए, मेरे साथ कनेक्ट करें, कोई गाना सजेस्ट करना है, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को।
0: The song we're going to feature this week is

कभी। गाने का नाम है बूंदे बाय द सिल्क रूट। ये गाना 1998 में आया था, सिल्क रूट द बैंड की डेब्यू एल्बम बूंदे का ही पार्ट था। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी, सिल्क रूट ने पॉप म्यूजिक स्पेस में अकूस्टिक गिटार, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड सॉफ्ट मेलोडी, वेरी पोएट्री फर्स्ट गानों को इंट्रोड्यूस किया था। बैंड के लीड वोकलिस्ट मोहित चौहान, बैंड मेंबर्स अतुल मित्तल, केम त्रिवेदी एंड केनी पुरी, उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी म्यूजिक वीडियोस, द वे देयर म्यूजिक ट्रैवल्ड इज समथिंग जो आज भी हम जानते हैं। इसी एल्बम का पार्ट था डूबा डूबा, जो हर घर तक पहुंच गया। पर उस एल्बम में और बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिन्हें आपको कभी फुर्सत लेके सुनना चाहिए। एंड अगर आप सच में उनकी म्यूजिकलिटी को जेन्युइनली एंजॉय करना चाहते हो, तो ये वाला गाना बूंदे उसे परफेक्टली डिफाइन करता है। गाने के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे और उसमें बारिश ना सिर्फ ऐसे मौसम का पार्ट नहीं है, बल्कि बूंदों को यादों से कंपेयर किया गया है, किसी की खुशबू से कंपेयर किया गया है, एक ऐसी प्रेजेंस से कंपेयर किया गया है जो हमारे सामने नहीं है बट आप हर जगह महसूस करते हैं। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो प्रोडक्शन में भी आपको 19-20 लग सकता है, बट द इमोशन इज सो फ्रेश एंड शायद इसीलिए ये एक प्रॉपर क्लासिक है। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सिल्क रूट द बैंड का गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिस इज बूंदे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

मैन ओ मैन, व्हाट इज दिस सॉन्ग? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मेमोरी में ऐसे फ्लोट कर रही थी. मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रूट द बैंड का गाना, दैट वॉज बूंदे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. पिंच मी अशकाय, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स वी हैड सो फार. एट RJ कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अशकाय माय साउंड प्रोड्यूसर. और मैं आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. 90s 2000s का वो इंडी पॉप गाना जो आज भी आपके लिए सुपर स्पेशल है, हमसे आके शेयर करिए. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट इज अगेन अ दिलजीत दोसांझ सॉन्ग. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम किया ये गाना. गाने का नाम है डीलर. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर इस हफ्ते हर्ष नुसी का साड़ी सुन। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी और गाना नंबर 9। एक नई नवेली एंट्री, एश किंग का गाना किनिया सोनी ने डेब्यू किया है और गाना नंबर 8। दिस सॉन्ग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय द वीक। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: उसके बाद आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, एक और कोक स्टूडियो भारत का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। बैक टू बैक बाय दिलजीत, उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड नाउ फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बंजारे का गाना बैरन 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2 एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन मिट्टा रौर स्वरा वर्मा की आवाज में, गाने का नाम है शीशा, वंस अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैरन ऑन गाना नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi.

Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। क्या हाल चाल है? कॉफी हाथ में है या अभी भी आंखों पर लोडिंग प्लीज लिखा हुआ है? वैसे ये वो शो शुरू हो चुका है जहाँ पर हम ट्रैफिक को थोड़ा सा लाइटर, डेडलाइंस को थोड़ा सा ब्राइटर और होम सिकनेस को थोड़ा सा और टाइटर हक देने वाले हैं। यार देसी लाइफ अब्रॉड ना कमाल की होती है। इंडिया में मम्मी जी बोलती है कि जल्दी उठ जाओ बेटा, और यहाँ पर अलार्म क्लॉक बोलता है, वेदर ऐप बोलता है, आउटलुक कैलेंडर बोलता है, बस सैलरी है कि चुपचाप बैठी रहती है। आज के शो में होने वाला फुल ऑन बॉलीवुड का तड़का, फिल्मी गॉसिप, म्यूजिक जो एकदम बैंगर है, और साथ साथ में कुछ अराउंड द वर्ल्ड की खबरें तुम्हें मिलने वाली, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, थोड़ा सा लाफ्टर एंड वो देसी वार्म्थ जो तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी के घर में मिलती थी। और हाँ, ऑफ एयर दोस्त भी मिलने वाला है मुझे, यानी कि प्रिसिला को फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर फटाफट से जाकर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी

गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और टाइम आ गया है ऑन दिस डे पता करने का हिस्ट्री में क्या हुआ था। चलो रिवाइंड मारते हैं। 1789 में फ्रांस में स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल हुआ और वहीं से शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज भी बास्टिल डे बड़े स्टाइल से सेलिब्रेट किया जाता है। 1942 में इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया, एक पावरफुल कॉल, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिस्ट्री का इंडिया में असली माइक ड्रॉप। 1965 में नासा के मरीनर 4 ने मार्स की पहली क्लोजअप पिक्चर भेजी थी। सोचो उस टाइम सेल्फी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं दूर दूर तक और मार्स कैमरा रेडी था। 1951 में फरारी ने सिल्वरस्टोन में अपनी पहली फॉर्मूला 1 ग्रां प्री विक्ट्री जीती थी और तभी से स्पीड और फरारी की लव स्टोरी ऑफिशियली शुरू हो गई थी। और 2016 में फ्रांस के नाइस सिटी में बास्टिल डे सेलिब्रेशन के दौरान एक हार्ट ब्रेकिंग टेरर अटैक हुआ। आज हम उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उस दिन ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई या अपने लव्ड वंस को गंवाया। एंड विद दैट यहाँ पर टाइम ट्रैवलिंग जर्नी खत्म होती है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते हैं मिर्चीदार गाने तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीफा.
1: मिर्ची वॉच इट.
0: एज ऑफ यस्टरडे टूर्नामेंट अभी सेमीफाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और क्या लाइनअप है बॉस. फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना, मतलब फुटबॉल के हेवीवेट चैंपियंस एक ही स्टेज पर मौजूद है. एंड प्लेयर वॉच भी सुन लो, जूड बेलिंगम इज एब्सोल्युटली ऑन फायर. इंग्लैंड के सुपरस्टार के नाम टूर्नामेंट में 6 गोल्स हैं और नॉर्वे के अगेंस्ट एक्स्ट्रा टाइम में 2 जबरदस्त गोल मारकर इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाया इन्होंने. प्योर क्लच प्लेयर वाइब्स. उधर किलियन एम्बापे गोल्डन बूट रेस में टॉप पर हैं विद 8 गोल्स और फ्रांस की अटैक लाइन को रॉकेट मोड में चला रहे हैं. और फुटबॉल लवर्स, कैलेंडर सेट कर लो, आज है ब्लॉकबस्टर फ्रांस वर्सेस स्पेन सेमीफाइनल और कल इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना. तो पॉपकॉर्न और बाकी का स्नैक्स विद चाय एंड ड्रिंक्स सब कुछ रेडी है कि नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप पर अननेसेसरी रेफरी एनालिसिस करने वाले सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया है ना. वैसे तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? दिल अर्जेंटीना के साथ है, इंग्लैंड के, स्पेन के या फ्रांस के? मुझे पक्का से बताओ. अभी के अभी मुझे मैसेज करो. मिर्ची प्रिज इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी नोट करो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब मिर्ची मॉर्निंग्स पर बारी आ चुकी है वेदर का हालचाल जानने की। फिलहाल टेम्परेचर है 67 डिग्री फारेनहाइट, ब्राइट सनशाइन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हल्की सी ब्रीज की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर कम फील हो रहा है, यानी 65 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। अदरवाइज बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट चाय या कॉफी के साथ आज के दिन की शुरुआत की जाए तो एकदम शेफ्स किस वाला दिन बन जाएगा। अब ट्विस्ट ये है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मर्क्यूरी जो है वो सीधा 95 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंचने वाली है, और फील्स लाइक टेम्परेचर होने वाला है 97 डिग्री के आसपास। हां जी, तो ये वो वेदर है जो कहता है मेकअप से ज्यादा आज सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है। गुड न्यूज ये है कि रेन का आज जीरो चांस है। पिछले 24 आवर्स में भी बारिश नहीं हुई, और अगले 24 आवर्स में भी अम्ब्रेला आज सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी बना रहेगा, अगर साथ में कैरी करोगे तो, वरना जरूरी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि एक्सट्रीम हीट वार्निंग इफेक्ट में है, और साथ ही एयर क्वालिटी अलर्ट भी चल रहा है, इसीलिए घर से बाहर अगर निकल रहे हो तो जरूरी हो तभी निकलना, और अगर जाना ही है तो साथ में अपने वाटर बॉटल कैरी करना बिल्कुल बनता है, बिकॉज यू गॉट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। साथ साथ में अपनी त्वचा को सूरज की किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगा लो, वो भी SPF 50++++ वाला। और एक एक्स्ट्रा बात का ख्याल रखना है कि लेयर के प्लेयर बनना है आज, क्योंकि टेम्परेचर आज काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। और साथ साथ में मिर्ची की वाइब्स बरकरार रखनी है तुम्हें, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIBRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए मिर्ची दैट बैंगर्स का टाइम है, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग। जरा बारी है सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर क्लियर किया है कि इंडिया का यूरेनियम सप्लाई के लिए सेफगार्ड्स इन प्लेस हैं। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर पैट कॉनरॉय ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ही यूज होगा। साथ ही उन्होंने इंडिया को एक राइजिंग ग्लोबल पार्टनर बताया है। नंबर टू पर यमन से टेंशन की खबर आ रही है। सनाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर स्ट्राइक के बाद रीजन में तनाव बढ़ गया है। हूथी ग्रुप ने रिटेलिएशन की वार्निंग दी है। सिचुएशन रैपिडली डेवलप हो रही है। और फाइनली स्पोर्ट्स से, इंडिया की वुमेन क्रिकेटर्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लॉर्ड्स में खेला गया पहला एवर वुमेन्स टेस्ट और इंडिया ने इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। क्रांति गौड के 7 विकेट्स और यास्तिका भाटिया की ब्रिलियंट सेंचुरी ने मैच को यादगार बना दिया। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे तुम्हारी मॉर्निंग्स। और अब लेट्स हियर फ्रॉम हॉलीवुड और रादर हॉलैंड। तो हुआ कुछ ऐसा कि टॉम हॉलैंड यानी कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ने रिवील किया कि उन्होंने नॉर्वे के फुटबॉल सुपरस्टार एर्लिंग हॉलैंड को DM भेजा था, एंड गेस व्हाट, रिप्लाई ही नहीं आया। टॉम ने खुद इस इंसिडेंट को एक हमलिंग एक्सपीरियंस कहा है। उन्होंने बताया कि वो मोनाको में Formula 1 रेस देख रहे थे, लुइस हैमिल्टन को सपोर्ट भी कर रहे थे, हॉलैंड दिखे तो सोचा व्हाई नॉट एक मैसेज भेज देता हूँ। बस मैसेज तो गया लेकिन रिप्लाई वेकेशन पर चला गया। एंड ऑनेस्टली यार, ये कितना रिलेटेबल है हम आम लोगों के लिए। तो यार कभी कभी किसी दोस्त को आप मैसेज भेजते हो, कभी किसी क्रश को भेजते हो, कभी फैमिली ग्रुप में तुम्हारा मैसेज या मीम इग्नोर हो जाता है। तब पता चलता है कि ब्लू टिक्स डोंट डिस्क्रिमिनेट, सेलिब्रिटीज हो या कॉमनर हो, गोस्टिंग सबके साथ होती है। लेकिन टॉम की बात में एक लेसन भी था। उन्होंने कहा कभी कभी ऐसे मोमेंट्स ईगो को ग्राउंड पर ले आते हैं और वो भी जरूरी होता है। फेयर इनफ टॉम, वैसे अगर तुम मेरे मैसेजेस इग्नोर करोगे तो मैं अगले शो में नाम तो नहीं लूंगी तुम्हारा, लेकिन मुझे अगर मैसेज भेजोगे तो शायद तुम्हारा नाम ले लूं। फटाफट से मुझे मैसेज करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल चलाते मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, नाम है प्रिसला और ऑफ कोर्स आई एम द होस्ट ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स। तो आज 14th of July को अगर तुम्हारा हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है तो मैं दिल से विश करती हूँ कि तुम्हारा नया साल जो है फुल ऑन ब्लॉकबस्टर हो, हेल्थ सुपर हिट हो और हैप्पीनेस हाउस फुल हो और बैंक बैलेंस बस बढ़ते जाए, वेट घटते ही जाए, मतलब एक पॉइंट पर आकर रुक जाए, बिकॉज दैट्स अनहेल्दी। लेकिन अब सुनो, आज तुम्हारे साथ किसका हैप्पी वाला बर्थडे है? फीबी वॉलर-ब्रिज, द ब्रिलियंट एक्टर, राइटर एंड क्रिएटर, जिन्होंने फ्लीबैक से दुनिया को अपना फैन बना दिया। देन वी हैव जेन लिंच, कॉमेडी की क्वीन, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस एक पंचलाइन की तरह है। देन वी हैव डैन रेनल्स, इमेजिन ड्रैगन्स के पावर हाउस लीड सिंगर, एंड डैन स्मिथ, ब्रिटिश बैंड बस्टील के लीड वोकलिस्ट। तो आज अगर उनका हैप्पी बर्थडे तो काफी सही दिन वो आए हैं इस धरती पर। और आज के बर्थडे बेबीज शेयर कर रहे हैं अपना बर्थडे फॉर्मर MMA चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर के साथ भी, और म्यूजिक इंडस्ट्री के वेल नोन एग्जीक्यूटिव टॉमी मोटोला, वो भी आज ही के बर्थडे क्लब में शामिल है। तो अगर आज तुम भी सेलिब्रेट कर रहे हो तो खुश रहो, सेफ रहो, अपनों को कॉल जरूर करना, उनका कॉल उठाना ऑफ कोर्स, एंड गिफ्ट से ज्यादा मेमोरीज बनाना। और हाँ, अपने बर्थडे शाउट आउट्स तो मुझे भेज सकते हो या फिर बर्थडे इनवाइट्स भी भेज सकते हो, कुछ नहीं तो केक के पिक्चर्स ही भेज दो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड stay hot.

0: राइट मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, और अब शो यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर बारी आ चुकी है गोल्ड रेट अपडेट जानने की।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,025, $4,025 पर ट्रायल्स के साथ आज मार्केट कल से भी नीचे ट्रेड कर रही है। इससे पहले गोल्ड वापस एग्रेसिव अपर ट्रेंड ले, राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एंड 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी। आप फाइनेंस कराइए, गोल्ड का प्राइस लॉक कीजिए, बिना किसी डाउन पेमेंट के, बिना किसी इंटरेस्ट के ज्वेलरी घर लेके जाइए और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स को पैसे दीजिए। और अगर आपके पास पुराना गोल्ड, पुरानी ज्वेलरी, गोल्ड बार्स पड़े हैं दुनिया में कहीं भी लिए हुए, यू कैन कम एंड टेस्ट इट एट राज ज्वेल्स कैरेटोमीटर, और फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू में आप अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके नए डिजाइन के गहने घर ले जा सकते हैं। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू गो माय फ्रेंड, गोल्ड रेट अपडेट लेटेस्ट एकदम एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: Just bounce.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में लिख रही हूँ तुम्हारे लिए खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एडवेंचर किंग बेयर ग्रिल्स ने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की अपने मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड से, फीचरिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। साथ ही उन्होंने एक इंटरेस्टिंग लाइन भी लिखी है, द बेस्ट लीडर्स वर नेवर द लाउडेस्ट। पोस्ट में फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा और प्रिंस विलियम के साथ भी उनकी फोटोज थी। और नंबर टू पर इंडिया से लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक 17th दिन में एंटर कर गया है। जब उनसे फास्ट खत्म करने की अपील की गई, उन्होंने कहा, मुझे फास्ट खत्म करने को मत कहिए, सरकार से पूछिए डायलॉग क्यों नहीं हो रहा है। सिचुएशन फिलहाल काफी सीरियस है और उम्मीद यही है कि बातचीत और पीसफुल डायलॉग से सोल्यूशन निकले। एंड लास्टली, इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट 96 के लेवल से नीचे चला गया है, जो मई के बाद का वीकेस्ट लेवल है। एक्सपर्ट्स इस मूवमेंट को राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन से जोड़ रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला। चाय सिप करो, सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि अब हम पता करने वाले हैं हमारे सितारे आज क्या कह रहे हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इट इज यानी मेष राशि। आज इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करो। फैमिली और पार्टनरशिप में दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन काम करने वाला है। आज तुम्हारा लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बिजी तो बहुत रहोगे, लेकिन बिजी और प्रोडक्टिव में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। दो इंपॉर्टेंट गोल्स पे फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, रिसेंट केओस के बाद फाइनली अब काम मोड ऑन हो चुका है तुम्हारी लाइफ में। फाइनेंशियल पजल का सलूशन भी नजदीकी है। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, फ्रेश स्टार्ट अलर्ट, आज का दिन नया चैप्टर का फर्स्ट पेज की तरह है। पास्ट को आर्काइव करो और फ्यूचर को डाउनलोड करो। लकी कलर फॉर यू इज आइवरी, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, आज जीप आइडियाज आए तो उनको इग्नोर मत करना, हो सकता है वही तुम्हारे मिलियन डॉलर आइडियाज हो। लकी कलर फॉर यू इज ब्रॉन्ज, लकी नंबर इज 31। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, जो चीज कब से सीक्रेटली चाहते थे वो अब दूर नहीं है। कॉन्फिडेंस पे इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्ट करो और आगे बढ़ो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू, लकी नंबर इज 8। एंड अगर तुमने अभी तक अपनी राशि नहीं सुनी है, यानी कि थोड़ी सी देर में पार्ट 2 ऑफ राशि जोन आने वाला है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। थोड़ा सा वेट करो, मिर्चीदार गाने सुनो, जाकर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। I'll be back in a while. Stay tuned and stay hot.

0: वेलकम बैक मेरी जान, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलिए देखते हैं कि बाकी की राशियों का आज रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, अगले कुछ दिन लाइफ का मेकओवर मोड ऑन हो सकता है। पॉजिटिव सोचो, अपॉर्चुनिटी सेल्फी लेने खुद से आने वाली है। लकी कलर फॉर यू इज टैंजरीन, लकी नंबर इज 19। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एडवेंचर बुला रहा है आज। सेल्फ बिलीफ ही तुम्हारा सुपर पावर है। ड्रीम को पेंडिंग नहीं रखते बेटा, काम करो उस पर। लकी कलर फॉर यू इज वायलेट, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, टफ डिसीजन से भागना नहीं चाहिए। वर्ल्ड को तुम जैसे बोल्ड लोगों की जरूरत है। हीरो बैकग्राउंड म्यूजिक इमेजिन करो और आगे बढ़ते जाओ। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, माइंडसेट ही मैजिक है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझो और गेम को चेंज करते जाओ। लकी कलर फॉर यू इज टील, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज कुछ लोग अचानक समझ आएंगे, शायद प्रॉब्लम उनमें नहीं, अपडेट तुम्हारे सॉफ्टवेयर को चाहिए। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 24। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, एनर्जी फुल चार्ज है, हर मिनट का स्मार्ट यूज करो, फ्यूचर वाला तुम्हें थैंक यू बोलेगा। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 12। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। कमिंग अप आर सम मिर्ची दे आर बैंगर्स ओनली फॉर यू। तब तक के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

और बस क्या, आज का वर्जी मॉर्निंग्स का सफर यहीं तक था और अब खत्म हो चुका है। जाने से पहले एक स्माइल वर्दी अपडेट देकर जाना तो बनता है। मेरा नाम है प्रिसिला एंड क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी का विंबलडन फाइनल लुक सोशल मीडिया पर फुल ऑन वायरल हो गया है। अगर तुमने नहीं देखा, यू मस्ट बी लिविंग अंडर अ रॉक। जब उनसे उनके स्टाइलिश सूट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इतनी ऑनेस्टी की बात बोली है ना कि इंटरनेट उन्हें और ज्यादा प्यार दे रहा है। उनका जवाब था, जल्दी जल्दी में जो मिला वही पर यहीं तक था और अब खत्म हो चुका है। जाने से पहले एक स्माइल वर्दी अपडेट देकर जाना तो बनता है। मेरा नाम है प्रिसिला एंड क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी का विंबलडन फाइनल लुक सोशल मीडिया पर फुल ऑन वायरल हो गया है। अगर तुमने नहीं देखा, यू मस्ट बी लिविंग अंडर अ रॉक। जब उनसे उनके स्टाइलिश सूट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इतनी ऑनेस्टी की बात बोली है ना कि इंटरनेट उन्हें और ज्यादा प्यार दे रहा है। उनका जवाब था, जल्दी जल्दी में जो मिला वही पहन लिया, अभिषेक भैया से बोलकर अरेंज कराया और डालकर आ गया। और ऑनेस्टली इतना ही रिलेटेबल था ना ये स्टेटमेंट। देसी लोगों का फैशन इमरजेंसी स्टार्टअप एक्ट यही होता है। शादी हो, पार्टी हो, एयरपोर्ट पे जाना हो, किसी फ्रेंड का बर्थडे हो, पहले पूछो यार कुछ पहनने को है तो यार कह रहे हैं बोरो। लेसन ऑफ द डे है, कॉन्फिडेंस टेलर नहीं देता है, कॉन्फिडेंस तुम्हें डिजाइनर कपड़े नहीं देते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस तुम्हारे खुद के एटीट्यूड से आता है। अगर स्माइल ओरिजिनल हो ना तो आउटफिट में चार चांद वैसे ही लग जाते हैं। तो बेस्ट आउटफिट दैट यू कैन कैरी इज your confidence and the second best outfit you can carry is your smile. और मुझे उम्मीद है कि आज की इस चाय मस्ती म्यूजिक और मॉर्निंग्स में तुम्हें अपना कम्यूट, अपना काम, अपना दिन जो है थोड़ा सा फन लगा होगा। अगर शो मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, मुझसे कनेक्ट कर लो इंस्टा और एक्स पर। मैं रोज इसी टाइम पर आती हूँ यहाँ पर। MIRCHIPRIS इज माई इंस्टाग्राम एंड एक्स का हैंडल एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, दैट्स 9033647244। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स। मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खाओ पियो ऐश करो और मिर्ची सुनते रहो। इट्स हॉट।

0: नाखून और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम भी तो कभी बच्चे हुआ करते थे और हम कब बड़े हो गए हमें भी नहीं पता लगा यार। छोड़ो हमारे बड़ों की बातें तो वाकई में, क्योंकि याद है आपको वो टाइम जब हम एज किड्स अपने सिबलिंग से एक रिमोट के लिए लड़ा करते थे। जस्ट इमेजिन, एक रिमोट के लिए, और हमने एक सफर तय किया है यार, फ्रॉम रिमोट के लिए लड़ना विद आवर सिबलिंग्स टू नाउ वॉचिंग नेटफ्लिक्स ऑल बाय आवरसेल्व्स। पहले सब इकट्ठे होके साथ में बैठ के टीवी देखा करते थे, तो एक रिमोट पे फाइट होती थी कि कौन सा चैनल लगेगा, किसका शो देखने को मिलेगा, कौन सा वक्त हो रहा है और किसका शो मिस हो रहा है। इन सारी चीजों पर लड़ाइयां होती रहती थी और घर में ना रौनके लगी रहती थी। अब ऐसा हो गया है कि सब अपने अपने टाइम पर आते हैं, अपना अपना शो देखते हैं और चले जाते हैं। इट्स मोर लाइक दैट। इनफैक्ट कितने घरों में तो हाल ये भी है कि अब बहन भाई जो है वो एक छत के नीचे भी नहीं रहते हैं, अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपने अपने शोज देख रहे होते हैं और यही मिस कर रहे होते हैं कि हाय ये एक रिमोट जिस पर आज पूरी तरीके से मेरा हक है, उस पर सबका हक हुआ करता था और सब उस हक के लिए लड़ा करते थे। लेकिन आज बड़ा बुरा सा लगता है यार जब एक पूरा रिमोट हमारे ही हाथों में और उस पर कोई लड़ने वाला नहीं होता, और बन जाती है हमारे दिल की एक कहानी जिसका नाम होता है किस्सा रिमोट का। चलो जी, विद दिस मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तुम जानो ना, हम गाना भी था और फिर एक पिक्चर भी बनी, याद है आपको ये फिल्म
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि यार ये कहीं गाने से तो रिलेटेड नहीं है, तो हम सही सोच रहे हैं। बिकॉज ना तुम जानो ना हम वॉज अ वेरी फेमस ट्रैक ऋतिक रोशन की मूवी कहो ना प्यार है का। और वो गाना इतना फेमस हो गया था कि फिल्म मेकर्स ने सोचा कि अगर इसके नाम पर फिल्म बना दी जाए तो वो भी फेमस हो ही जाएगी। लेकिन अफसोस, ये फिल्म उतना अच्छा तो नहीं कर पाई जितना कि ऑफकोर्स कहो ना प्यार है ने किया। एंड फिल्म मेकर्स को ऋतिक रोशन को इस फिल्म में कास्ट करने का वो फायदा नहीं हुआ जो होना प्यार है में हुआ था। लेकिन दिस फिल्म विच स्टार्ड ऋतिक रोशन, सैफ अली खान एंड ईशा देओल स्टिल वाज समवेयर क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट, क्योंकि बड़ी क्यूट सी फिल्म थी यार। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि ये जो फिल्म की स्टोरी है ना, ये फिल्म की स्टोरी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके पेरेंट्स की स्टोरी है। द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जिनका नाम है अर्जुन सबलोक, उन्होंने डिसाइड किया कि उनके पेरेंट्स की जो स्टोरी है उसको एक फिल्म में तब्दील किया जाए। एंड माय व्हाट डू वी से अबाउट इट। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस चीज को कैसे बोलूं कि अंकल आंटी की लव स्टोरी फिल्म ही थी या फिर ये कहानी इज रियलिटी। एंड अर्जुन सबलोक ने एज अ डायरेक्टर ना तुम जानो ना हम से डेब्यू किया था। हालांकि ये एक एक्टर भी रहे हैं और बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया इन्होंने, लेकिन द एपिक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इन्होंने एक्टिंग करी है यार। शाहरुख खान के दोस्तों की जो टोली थी ना, उनमें से एक थे करण जौहर और उनके एक और फ्रेंड थे लंबे चौड़े से, That was the director of the film, Arjun Sablok himself. And वैसे जब इस फिल्म की शूट हो रही थी ना, that time Arjun Sablok और सैफ अली खान, इन दोनों के बीच में बहुत सारे arguments हुए regarding the factor कि सैफ अली खान का जो रोल है वो इस फिल्म के अंदर काफी छोटा है। एंड सैफ अली खान को लगता था कि उनके ज्यादा सीन्स होने चाहिए इन द फिल्म। मैंने kept on insisting कि एक सॉन्ग एड कर दिया जाए और यू नो कुछ और additions कर दिए जाए, और इस चीज को लेकर इनके जो arguments थे they went on to be unending. वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा रोल ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड ने भी किया है, जो कि इस फिल्म में भी ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड है। सो बेसिकली शेफ चीनू वाजे, जो कि इस फिल्म में ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं, वो रियल लाइफ में भी ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड है। एंड नाउ शी इज बिकम अ शेफ, और वो और उनके हस्बैंड जो है वो मिलकर एक गोमे केटरिंग बिजनेस करते हैं। लेकिन हाँ, शेफ चीनू वाजे ने भी कभी एक्टिंग करी थी, एंड आई थिंक दिस वॉज द ओनली प्रोजेक्ट शी डिड एज एन एक्टर। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू नो हु दिस इज, तो शेफ चीनू वाजे करके आप डालेंगे ना, आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगा उनका अकाउंट। कमिंग अप मोर ऑन द फिल्म ना तुम जानो ना हम, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, Sara ka diwana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: ना तुम जानो ना हम, जब ये फिल्म बनी तो इसके साथ साथ एक कहानी भी बनी, जहां राखी सावंत ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अर्जुन सबलोक, उन पर एक इल्जाम लगाया।
2: मिर्ची चैट रूम।
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, राखी सावंत जो उस जमाने में बोल्ड अपीयरेंसेस के लिए बहुत फेमस थी, आज वो बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए हैं, लेकिन एट दैट टाइम बोल्ड अपीयरेंसेस के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी। और उस टाइम पर उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, एंड दैट वॉज एन इंटरव्यू जहां पर उन्होंने ये बोला कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, ना तुम जानो ना हम के डायरेक्टर अर्जुन सबलोक, उन्होंने राखी से एक ऑडिशन में स्ट्रिप करवाया था। और जब अर्जुन सबलोक से ये बात पूछी गई तो उन्होंने इस बात को नकारा नहीं, उन्होंने कहा कि उनको एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस की, एक पर्टिकुलर रोल के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्किन शो की जरूरत थी। एंड ही सेड दैट ही सर्टेनली वांटेड टू मेक श्योर कि यार वो जो बंदी है वो उन कपड़ों के अंदर एस्थेटिकली सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इट वाज नॉट जस्ट राखी सावंत, बल्कि और भी लड़कियां थी इस फिल्म के अंदर जो कि हॉट बेब्स का रोल प्ले कर रही थी, और उनको भी तरह तरह के कपड़े पहनाकर चेक किया गया था, जिसमें कि इंक्लूडेड थी अचला सचदेव एज वेल। बट उन्होंने इस बात की क्लैरिटी भी दी कि जिन लोगों को मसाला चाहिए उनको मसाला मिलेगा नहीं, बिकॉज मैंने राखी सावंत को पर्सनली ऑडिशन नहीं किया था, मेरी टीम ने ऑडिशन किया था। इनफैक्ट उस टीम में जिसने ऑडिशन किया था वो खुद एक बंदी थी। देखो यार, मुझे तो हमेशा से इस बात से थोड़ी सी दिक्कत ही रही है जहां पर यू नो फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, बट वो पार्ट अलग है, अब वो मूवीज का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि आई डोंट थिंक आई हैव एनी से। बट यहाँ पर आई वुड जस्ट से वन थिंग, क्लियरली कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करना कोई राखी सावंत से तब भी सीख सकता था और आज भी सीख सकता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आर माधवन एंड अमरीश पुरी साहब ने भी एक फिल्म में काम किया था, लेकिन ये लंबी चौड़ी फिल्म नहीं थी, ये एक एड फिल्म थी, याद है आपको? नहीं है तो मैं याद दिलाती हूँ।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब पिटारा खुल रहा है उस जमाने के एडवर्टाइजमेंट्स का, जहां पर एड्स देखने में भी बड़ा मजा आया करता था यार। एंड देयर वाज दिस एड जिसमें आर माधवन एंड अमरीश पुरी साहब ने साथ काम किया था। अब जब इसके बारे में सोचती हूँ तो याद आता है कि यार ये तो बड़ी ही अनयूजुअल जोड़ी थी, जो उस एड फिल्म के चलते बन गई सो बन गई। और इन दोनों ने इस एड फिल्म में काम किया था जो कि हमें बड़ी अच्छी लगा करती थी। और अगर आपको याद नहीं आ रहा ना, तो चलो मैं आपको ना उसका एक पार्ट सुनाती हूँ।
2: मैं बुजुर्ग हूँ, सारे संस्कार भूल गए, नो मैनर्स, कंप्यूटर क्लास के लिए लेट कर दिया कमबख्त ने। लाओ।
3: क्यों, गुरु दक्षिणा नहीं देंगे?
1: याद आया ये एडवर्टाइजमेंट, मुझे बड़ा अच्छा लगा करता था यार, जब एंड में ना ये क्लियर हो जाता था कि हाँ, बच्चों ने बड़ों की इज्जत करी। हम ये सारी चीजें ऑन स्क्रीन देखकर कितना एक्साइटेड हो जाया करते थे, नहीं क्या पगले से हम। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म हम दिल दे चुके सनम। तो एक्चुअली एक रोमांटिक गाना है, लेकिन आपको पता है इस गाने को मेरा दिल कहाँ जोड़ता है? बचपन की उस अदा पर, जहां पर हमारी आंखों की गुस्ताखियां कभी माफ नहीं हुआ करती थी। जब ऐसा होता था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, टेबल के ऊपर फुल ऑन स्नैक्स रखा हुआ है, मतलब बिस्किट, चिप्स, नमकीन, मिठाइयाँ, जो बोलो सब लगा हुआ है यार। और हमारी आंखें जो हैं वो इतनी गुस्ताख थी कि बार बार उस टेबल को देखा करती थी, और मम्मा की आंखें हमें दूसरे कोने से ताड़ रही होती थी कि ये घूरना बंद करो। और बाद में जब मेहमान चले जाया करते थे ना, तो डिपेंडिंग ऑन कितनी गुस्ताखियां करी हैं, या तो हमें जूते पड़ते थे या तो हमें डांट पड़ती थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पड़ता था। और तब ये आंखों की गुस्ताखियां कभी माफ नहीं की जाती थी।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, it's time for मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गाने मैं आपके लिए मिक्स करके चला देती हूं और आपको गैस करना होता है कि ये जो दो धुने हैं ये कौन से गानों की हैं। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।

बस जी, डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता दीजिए इन दोनों गानों के नाम एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपके 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आशिकी का ये गाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। वेल एक्चुअली हमारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ कि धीरे धीरे से ही सही, लेकिन अब समझ में आया है कि ये गाना ओरिजिनल नहीं है।
2: मिर्ची, थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या गाना था यार, कुमार सानू की आवाज में, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में। वेल, मैं गाऊंगी तो गाने की ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली अब जब बात में से बात निकली है तो यहाँ पर भी काम कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, गुल खिलाए गए हैं और वो भी कट कॉपी पेस्ट के। वेल, ये गाना इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ एन इंग्लिश सॉन्ग जिसे गाया था जॉयस सिम्स ने। और ये गाने की धुन ही नहीं, इस गाने की लिरिक्स आर ऑल्सो अ कॉपी फ्रॉम दिस इंग्लिश सॉन्ग विच इज कॉल्ड कम इन टू माई लाइफ। सुनिए जरा।

के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये कॉपी एकदम सही कॉपी लग रही है आपको? वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत है, तो क्या आपके हिसाब से अकल इस्तेमाल की गई है इस कॉपी में? डीएम करिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अलावा एक बर्बादी की कवरेज भी चल रही थी।
1: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आपको याद नहीं है ना, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं वो टाइम जब हम सब वर ग्लूड टू द टेलीविजन स्क्रीन्स वाचिंग अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय की शादी का कोई तो भी फुटेज जो हमें दिख जाए। वो उनके बंगले के बाहर के ही फुटेजेस होते थे ज्यादातर, तो अंदर क्योंकि एक्सेस नहीं था ऑफकोर्स प्रेस को, लेकिन हम तब भी टेलीविजन पर चिपके हुए थे कि यार कुछ तो दिख जाए, और कुछ तो दिख जाए, कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी जा रहा है, कैसे लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन। और जब बारात की फुटेज दिखाई तो सब पागल ही हो गए यार। मुझे तो आज भी याद है अभिषेक बच्चन की शेरवानी और उनके साफे पे वो जो कलगी थी ना, इतना खूबसूरत था ना वो ब्यूटीफुल सा ब्रूच जिसको कि कलगी कहते हैं, जो उन्होंने अपने साफे पे पहना हुआ था। एनीवेज, मैं काफी बह गई हूँ उस दिशा में, लेकिन आते हैं इस दिशा में जहां पर उनकी शादी के फुटेज के अलावा एक और बर्बादी का फुटेज था, एंड दैट वाज जानवी की बर्बादी का फुटेज। नहीं नहीं, हम जानवी कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की बात नहीं कर रहे हैं। देयर वाज दिस अनदर जानवी जो कि अभिषेक बच्चन की शादी के वेन्यू के बाहर हो हल्ला मचा रही थी, और उसका ये क्लेम था कि अभिषेक एंड जानवी आर इन लव, दे हैव गॉटन मैरिड एंड दे हैव हैड अ रिलेशनशिप एंड पता नहीं क्या क्या करके उस बंदी ने जो ड्रामे करे। हमें लगा था अगली राखी सावंत आ गई है, और ये बंदी अभिषेक बच्चन के साथ काम कर चुकी थी। वो गाना नहीं था, 10 बहाने करके ले गए दिल। उस गाने के अंदर जो बैकग्राउंड में डांसर्स काम कर रहे हैं, उनमें से एक वाज दिस बंदी जानवी। एंड हुआ क्या? वेल, हुआ कुछ भी नहीं। वो एक दिन था, दो दिन ज्यादा से ज्यादा जब इस बारे में हो हल्ला मचा, उसके बाद ये बंदी कहां गई पता ही नहीं लगा। एंड देन कट टू वो टाइम जब जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी का लॉन्च हुआ, एट दैट टाइम हमने ये नाम सुना था। इस दौरान हमने कहीं पर भी इस जानवी का जिक्र तो नहीं सुना था यार। अगर आपने कोई जानकारी हासिल करी है इस बंदी के बारे में अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव, तो डू लेट मी नो, ये गॉसिप ऑन एयर भी शेयर की जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जब शादी हो रही थी ना, तो यार ये शादी की कवरेज जो है ये तो हर एक न्यूज चैनल पर नजर आ रही थी, लेकिन इस शादी

0: बस तुम रहते हो।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Phantom वाली मीठी सिगरेट
2: यादों को चिट्ठी।
1: बचपन में बुरी नहीं मीठी आदत थी तुम्हें पीकर ना स्वैग मारना और फिर आईने को तारना ये देखने के लिए कि होठ पर तुम्हारी रेड एंड व्हाइट रंग की लाली लगी कि नहीं। बाकी जब तुम्हें गर्मियों में पिया करते थे ना तो उंगलियों के पसीने से तुम पिघल जाया करती थी और ऐसे पिघलती थी जैसे कि आज मैं अपनी बहन के मनाने पर भी नहीं पिघलती हूँ यार। एक डब्बा तुम्हें लाया करते थे और लंबा चलाया करते थे और तुम्हें होठों के बीच दबाकर 80s के किसी विलन की तरह लुक देते हुए एक्ट तो ऐसे करते थे जैसे कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत हो हम। आज जब अडल्ट्स को स्मोक करते हुए देखती हूँ ना तो कभी कभी हंसी छूट जाती है कि कभी हम ये बनने की कोशिश किया करते थे तुम्हें उंगलियों में दबाकर और अपना स्वैग दिखाकर। और आज जो दोस्त तुम्हारी बड़ी बहन यानी कि असली सिगरेट को जलाते हैं ना अब हम उन्हें इस आदत को छोड़ने को कहा करते हैं। बचपन का लेंस बड़प्पन के लेंस से कितना डिफरेंट होता है नहीं। तुम्हारी खास मिठास को याद करती हुई तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म स्वदेश इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, ये गाना मुझे गाना कम और जुगलबंदी ज्यादा लगती है बिटवीन द महारथी सिंगर्स, हाँ, हरिहरन, कैलाश खेर एंड उदित नारायण। और इसी वजह से ये गाना जो है ये फिलोसफिकल भी हो जाता है और साथ ही साथ ना थोड़ा सा नाटक, नौटंकी और शैतानी भी इस गाने के अंदर सुनाई देती है। बट ये गाना ना बड़ी ही सही बात कर रहा है। इट ऑल्सो इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, जहाँ पर एक बंदा इज टोटली पॉजिटिव अबाउट लाइफ एंड वट हैज टू हैपन इन फ्यूचर, एंड द अदर वन इज अ लिसनर जो अभी कंफ्यूज है कि यार मेरी लाइफ में होने क्या वाला है। तो बंदा जो पहला वाला है, जो पॉजिटिव वाला बंदा है, वो बड़े सही तरीके से कहता है कि ये रास्ता है, कह रहा अब मुझसे, कि मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। अगला कहता है कि यार दिल को है क्यों ये बेताबी और किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। और यहाँ पर दिल लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ना अपने उस इंसान के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और कभी कभी हमारा दिल कह रहा होता है ना कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, कोई आने वाला है। एक आहट सी आपको महसूस हो रही होती है बिना उस इंसान के आए और बिना आपके ये जाने कि वो इंसान कौन होगा। एंड दिस इज अ फीलिंग जो उसी को पता है जिसने कभी महसूस करी है। और अगर आप वो इंसान हो ना तो मुझे DM करके अपनी स्टोरी जरूर बताना। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा। अभी के लिए यही गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लोगों को लगा अब इस बंदे की हिट पे हिट पे हिट पे हिट फिल्में आई थी, एक दो आई भी जैसे कि बागी, साजन, सनम बेवफा, लेकिन उसके बाद धड़ल्ले से फ्लॉप फिल्में जैसे कि पत्थर के फूल, सूर्यवंशी, जागृति, निश्चय, एक लड़का एक लड़की, चंद्रमुखी, दिल तेरा आशिक, ये सब चलता रहा 1994 तक। लेकिन उनके सितारे फिर बदले 1994 में जब आई हम आपके हैं कौन, जिसने लड़के को फिर से स्टार बना दिया। वैसे सलमान खान और दीवार फिल्म में क्या रिश्ता है? इनके पिताजी ने लिखी थी दीवार फिल्म, सलीम खान साहब अलोंग विद जावेद अख्तर साहब। दीवार फिल्म का गाना सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1973 की फिल्म सौदागर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में थी नूतन, साथ में थे अमिताभ बच्चन। उनकी जगह पे पहले ना इस फिल्म में संजीव कुमार होने वाले थे, लेकिन क्या हुआ था, 1970 की फिल्म देवी की फिल्म की शूटिंग के दौरान, जिसमें अगेन नूतन एंड संजीव कुमार थे, नूतन जी को ऐसा पता चला कि संजीव कुमार उनके रिलेशनशिप के रूमर्स फैला रहे हैं, जबकि नूतन जी ऑलरेडी मैरिड थी, उनका बेटा भी था, तो उनको ऐसा पता चला कि वो उनके आपस में रिलेशनशिप के रूमर्स फैला रहे हैं। इस बात को लेकर जब उन्होंने संजीव कुमार जी को कन्फ्रंट किया तो संजीव कुमार जी ने इस बात को डिसमिस कर दिया और थोड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाया, जिससे नूतन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सेट पे सबके सामने संजीव कुमार जी को थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से फिर नूतन जी के हाथ से काफी फिल्में छूट गईं, काफी फिल्मों से संजीव कुमार भी अलग हो गए, एंड सौदागर वॉज वन सच फिल्म। चलिए लड़ाई झगड़ा साइड करते, लव इश्क प्यार मोहब्बत वाला गाना सुनते। कुछ ज्यादा ही लव इश्क प्यार मोहब्बत था इस गाने में, दयावान का ये सुपर रोमांटिक गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म के दौरान चुपके चुपके जिसका हमने गाना सुना, धर्मेंद्र साहब प्लेड लिटिल डर्टी। वो कैसे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो ऐसे कि डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने आशा पारेख जी को प्रॉमिस किया था कि वो उनको इस फिल्म में कास्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि तब धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे, ही समहाउ वांटेड टू वर्क विद शर्मिला टैगोर इन दिस फिल्म, एंड किसी तरह से ऐसे वैसे जैसे तैसे करके उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को कन्विंस कर लिया कि शर्मिला टैगोर को इस फिल्म के लिए कास्ट किया जाना चाहिए। एंड आशा पारेख जी वॉज कम्प्लीटली साइडलाइंड इस बात को लेकर। वो ऋषिकेश मुखर्जी से एंड धर्मेंद्र से काफी टाइम तक नाराज रही थी। बिल्कुल नाराजगी बनती है अगर ऐसा हुआ था तो। और अभी कैसा है कि ब्रेक लेंगे हम, म्यूजिकल ब्रेक, जहां गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

Mitchie, it's hot. Purani jeans with Charu, only on Mitchie.

1981 की फिल्म नसीब का ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और यही थी वो फिल्म जिसके गाने से फारा खान को इंस्पिरेशन मिली थी ओम शांति ओम में वो वाला गाना इंक्लूड करने की, जिसमें इतने सारे फिल्म स्टार्स थे। और नसीब फिल्म में वो गाना कौन सा था? जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम पम पम पम। और इसमें जो इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आए थे ना, उनको जमा करने की जिम्मेदारी पता है किसकी थी? अच्छा, फिल्म तो मनमोहन देसाई साहब ने ये डायरेक्ट की थी, लेकिन इन एक्टर्स को जमा करने की जिम्मेदारी थी राज कपूर साहब की। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा गाना जो है वो आरके स्टूडियोज में शूट हुआ था। जॉन जॉनी जनार्दन, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देखें, मजा आ जाएगा। और अभी सुनेंगे वो गाना जो बड़ा क्यूट टाइप का रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना, लेकिन इस फिल्म के दौरान प्रेम का एक धागा टूट गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। प्रेम नहीं, एक्चुअली ये दोस्ती का धागा टूट गया था। भाई देवानंद साहब और मदनपुरी साहब की बहुत अच्छी खासी पुरानी दोस्ती थी, जिसमें इस फिल्म के दौरान दरार पड़ गई। मदनपुरी साहब एक और फिल्म साइन करना चाहते थे जिसका नाम था नन्ना फरिश्ता। अभी सीन कुछ यूं हुआ कि प्रेम पुजारी फिल्म के लिए जो उन्होंने डेट्स दे रखी थी, उन डेट्स में से 5 दिन निकाल के उनको उस फिल्म को देने थे। उन्होंने देवानंद साहब से रिक्वेस्ट की और ऐसी कुछ बात हुई कि देवानंद साहब थोड़ा गुस्सा हो गए, वो मदनपुरी साहब पे चिल्ला दिए, उनको वो 5 दिन नहीं मिले और दूसरी फिल्म उनके हाथ से निकल गई। इस पर मदनपुरी साहब उनसे काफी नाराज हो गए। बाद में दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उन्हीं फिल्मों में जिनका काम पहले से चल रहा था या किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से। पर्सनल रिश्ता फिर वैसा रहा नहीं। वो क्या बोलते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
2: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

1988 की सुपर डुपर हिट फिल्म कयामत से कयामत तक का सुपर डुपर से भी ऊपर हिट गाना इट इज सॉर्ट ऑफ एन एंथम पापा कहते हैं ये हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में आमिर खान का किरदार जिस पापा के लिए गाना गा रहा है दैट पापा इज प्लेड बाय दिलीप ताहिल साहब। एंड दिलीप ताहिल साहब को बुनियाद टीवी शो जो उस टाइम मिड 80s में दूरदर्शन पे आता था, बहुत ही पॉपुलर शो था, उसमें उनका काम देखकर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब ने उनको साइन किया था। एंड टॉकिंग अबाउट दिलीप ताहिल साहब ना, अगर आप उनका इंस्टाग्राम फॉलो करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत एंटरटेनिंग है वो। वहां पे खुद ही के ऊपर बने मीम्स वो शेयर करते रहते हैं और जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं सबको फॉलो करते हैं। तो उनका आईडी है @dalip DALIP दलीप THIL ताहिल दलीप ताहिल। वेल मेरा आईडी ऑन इंस्टाग्राम इज @rj.charu rj.charu। और अभी हम सुनेंगे वो गाना जो कि है फ्लर्टेशन का पापा गाना। दिस इज ऑल्सो एन एंथम। आराधना फिल्म का ये गाना कंपोज्ड बाय एसडी बर्मन, रिटन बाय आनंद बख्शी, संग बाय किशोर कुमार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

हाय, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची, तीन देवियां फिल्म का ये गाना। और अब जो गाना सुनने वाले हैं ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आई एम श्योर आपको भी पसंद है। मंजिल फिल्म का रिमझिम गिरे सावन। जी, वही गाना जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ऐसे बारिश में, मतलब मजे में घूम रहे हैं, बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं, रोमांस भी कर रहे हैं। तो इस आइकॉनिक पिक्चराइजेशन के पीछे की कहानी ये है कि डायरेक्टर बासु चटर्जी ने इन दोनों को फुल फ्रीडम दी थी टू इम्प्रोवाइज। बॉम्बे की अलग अलग लोकेशन पे जाया गया जब बारिश हो रही थी और इस गाने को शूट किया गया, तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, इनका जो मेकअप था, वो सब ऐसे धुल रहा था बारिश में साथ साथ, लेकिन शूटिंग ऑन थी। तो पूरा का पूरा क्रू अलोंग विद दीज टू वो ऐसे हॉप कर रहे थे अलग अलग लोकेशंस पे गाना शूट करने के लिए, बिना किसी कोरियोग्राफी के, बिना किसी प्लानिंग के, और इसीलिए शायद वो इतना ब्यूटीफुल निकल कर आया है। तो सुन लेते हैं ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मिर्जा गालिब का ये शेर बड़ा अच्छा लगता है यार मुझे। और घर के ऊपर गुलजार साहब ने क्या लिखा है, आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। और एक और मुझे बहुत पसंद है, ये लिखा है उम्मीद फाजली साहब ने, ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। ओए होए, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची 101.3।

1969 की फिल्म दो रास्ते मिर्ची सुन रहे हैं आप पुराने जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म ना राजेश खन्ना साहब की शुरुआती फिल्मों में से एक है जहाँ पे स्टोरी ऐसे उनके आसपास रिवॉल्व नहीं करती है। इट्स अ फैमिली ड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग। और इसमें आप इनका लुक भी देखें ना, तो ऐसे दाढ़ी बढ़ा के अनशेवन से घूमते रहते हैं, बिकॉज वो दो फिल्मों में इत्तेफाक और ये वाली फिल्म दोनों में साथ में काम कर रहे थे, तो दाढ़ी बनाने का टाइम ही नहीं था उनके पास। एक सेट से निकलकर दूसरे सेट में घुस जाते थे वो। अच्छा, ये फिल्म ना दिसंबर 1969 में रिलीज हुई थी और सुपर डुपर हिट हो गई थी। फिल्म अच्छी थी, लेकिन एक्चुअली इसको सुपर डुपर हिट कराने का थोड़ा सा क्रेडिट सितंबर 1969 में रिलीज हुई आराधना को भी जाता है, बिकॉज इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब ऐसे धरती पछाड़ आसमान फाड़ सुपरस्टार बन गए थे। इनफैक्ट आराधना के ब्लॉकबस्टर होने का फायदा उसके बाद राजेश खन्ना साहब की रिलीज हुई काफी फिल्मों को मिला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

त्रिशूल फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है त्रिशूल फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए अमिताभ बच्चन साहब बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इस फिल्म के लिए उनको फिर अवार्ड नहीं मिला था क्योंकि उनको डॉन फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिल गया था उसी साल 1979 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में। यस, दोनों फिल्म्स के लिए वो नॉमिनेटेड थे बट उनको अवार्ड डॉन फिल्म के लिए मिला। उससे पहले एक साल पहले अमर अकबर एंथनी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑलरेडी वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके थे। तो ये वो कंजेकेटिव ईयर्स थे जब बच्चन साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 1978 and 79। एंड रिवाइंड टू 1975, बच्चन साहब की जमीर फिल्म का ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

0: ये तो हमें पता है कि शोले फिल्म ने बहुत अलग अलग फिल्मों से इंस्पिरेशन ली है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन सच फिल्म्स इज 1971 की सुपरहिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश। दोनों फिल्म में क्या सिमिलैरिटीज? दोनों फिल्म में एक डिसेबल्ड अथॉरिटी फिगर होता है जो गुड हार्टेड गुंडों को हायर करता है डाकुओं से लड़ने के लिए। मेरा गांव मेरा देश में सिर्फ धर्मेंद्र इस तरह के गुड हार्टेड गुंडे होते हैं, शोले में अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र। मेरा गांव मेरा देश में ये डिसेबल्ड अथॉरिटी फिगर का रोल प्ले करते हैं जयंत साहब, जो इंटरेस्टिंगली अमजद खान साहब के फादर थे, एंड शोले में ये रोल संजीव कुमार प्ले करते हैं। शोले में विलन का नाम गब्बर सिंह और मेरा गांव मेरा देश में विलन विनोद खन्ना का नाम जब्बर सिंह। चलिए मेरा गांव मेरा देश का ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: कुछ

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मालूम नहीं है, हमसे सुनो।
1: शागिर्द फिल्म का गाना, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सायरा बानो और जॉय मुखर्जी के बीच में बहुत ही फन बैंटर चलता था, बिकॉज जॉय मुखर्जी बहुत शरारती थे, प्रैंक्स करते रहते थे, और खास करके जब उनका सीन नहीं होता था, सायरा बानो का सीन होता था, तो उनको चिढ़ाते रहते थे, यू नो। एंड सायरा बानो गॉट सो सिक ऑफ हिज प्रैंक्स एंड हिज थिंग्स कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास शिकायत करने चले जाती थी कि भाई इस बंदे के साथ मैं नहीं काम कर सकती, ये वो। तो बड़ी मुश्किल से दोनों के बीच की ये लड़ाई जो है वो सुलझाई जाती थी और शूटिंग बहाल की जाती थी। चलिए आप भी फिलहाल बहाल सी खुश सी स्माइल मुझे दे दीजिए, मुस्कान जो जाए कान तक और कान मिर्ची पर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जिंदगी में टॉक्सिसिटी की कमी हो रही है तो ये शो देख लीजिएगा।
2: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची बेटी उन्हें नोवा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रियलिटी शो लॉकअप। भाई इनमेट बन के आए हैं लॉकअप के अंदर लोग जिनके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगे हैं और थ्रू देयर जर्नी इन द हाउस उनको अपने ये चार्जेस गलत प्रूव करने हैं। एनीवे द वन पर्सन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अभी इज शिल्पा शिंदे।
0: इट्स हॉट।
1: जिंदगी में टॉक्सिसिटी की कमी हो रही है तो ये शो देख लीजिएगा।
2: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची बेटी उन्हें नोवा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रियलिटी शो लॉकअप। भाई इनमेट बन के आए हैं लॉकअप के अंदर लोग जिनके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगे हैं और थ्रू देयर जर्नी इन द हाउस उनको अपने ये चार्जेस गलत प्रूव करने हैं। एनीवे द वन पर्सन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अभी इज शिल्पा शिंदे। चार्जेस लगे हैं और थ्रू देयर जर्नी इन द हाउस उनको अपने ये चार्जेस गलत प्रूव करने हैं। एनीवे द वन पर्सन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अभी इज शिल्पा शिंदे। ये वो हैशटैग फुल कंट्रोल मोड ऑन हो चुका है इनका। और कसम से बता रही हूँ, इन मोहतरमा को देखने के बाद ना मैं हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रही हूँ कि मेरे जिंदगी तो छोड़ ही दीजिए भाई, मेरे दुश्मनों की जिंदगी में भी ऐसे इंसान को मत आने देना यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: जय कन्हैया लाल।

on my channel.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस।